0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य
4: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। विदेशी अंशदान वी

0: नियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपरलीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
1: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
0: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने के लोकसभा के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने यह कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि संगठित धोखाधड़ी रैकेट ने इस परीक्षा में अनियमितताएं की।
2: इस कथित पेपर लीक के कुछ ही घंटों के भीतर पंजाब पुलिस ने फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर के 25 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई करके एक अंतरराज्यीय चीटिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। पुलिस ने 7 मुख्य साजिशकर्ताओं और 28 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया था जो इस मामले में सीधे तौर पर शामिल थे। पंजाब सरकार ये कहती आ रही है कि यह घटना पारंपरिक पेपर लीक के बजाय हाईटेक चीटिंग से जुड़ी है। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सहित विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सहित पार्टी के नेतृत्व पर कथित पेपर लीक को मामूली चीटिंग का मामला बताने की कोशिश करने के लिए निशाना साधा है। विपक्षी पार्टी के नेता जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान हुआ। समूह ने सुरक्षा बलों पर घायल नागरिकों को हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। कुछ घायलों की मौत उपचार न मिलने के कारण हुई। ड्रोन और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त करते दिखाई दिए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति का संज्ञान लेने तथा बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। पिछले एक दशक में कबायली इलाकों में पाकिस्तान सेना के हवाई हमले और बमबारी में अनेक नागरिक मारे गए हैं। मानवाधिकार समूहों ने इन हमलों की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान का अपने ही लोगों पर सैन्य बल इस्तेमाल का इतिहास रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ओम प्रकाश ने पाकिस्तान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की खामोशी पर सवाल उठाया है।
3: पाकिस्तान सुराब में वही कर रहा है जो वो दशकों से करता आ रहा है। बलोच के

0: राजस्थानों के साथ, सिंधियों और कश्मीरियों के साथ। कितने आश्चर्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जो कि हर दूसरे देश में बोलता रहता है, पाकिस्तान पर आके चुप हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि अब बलोच, सिंधी, पठान, कश्मीरी सारे एथनिक ग्रुप्स अब मिलकर आवाज उठाने लगे हैं, एक दूसरे के साथ ताल मिला के। ये निश्चित रूप में एक आशा का किरण है।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है।
2: कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव, क्षेत्र में हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि पिछले दो महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शनों में लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आज उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार

0: विरोध प्रदर्शनों में लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आज उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज और तेज होकर डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके असर से उत्तरी ओडिशा, खासकर बालेश्वर, मयूरभंज और केंद्र में लगातार भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में बालेश्वर में लगभग 137 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भद्रक, अनुगुल, जाजपुर और ढेंकानाल जिलों में भी भारी बारिश हुई है। इस बीच कोरापुट जिले के नंदापुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले डारे गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे।
3: अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक है, बल्कि कलाकारों के निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो के सम्मान में 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में ताम्र पत्र और अंगवस्त्रम के अतिरिक्त 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फेलोशिप के लिए चुने गए लोग और पुरस्कार विजेता भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरजू के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: झारखंड में 14वीं JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुंच गया है।
4: 14वीं JPSC परीक्षा में कथित विसंगतियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अभ्यर्थी पूरी तरह लामबंद हैं। इसी कड़ी में रांची में JPSC JSSC रिफॉर्म मंच की कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर गहन चर्चा की गई और छात्रों ने मांगे पूरी होने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प दोहराया। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। भारतीय पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर झारखंड सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया और पूरे विवाद की CBI जांच कराने की मांग दोहराई। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम।
1: केरलम में आज 3 स्थानों पर सशस्त्र बल के बैंड संगीत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ये संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
5: नौसेना और वायुसेना आज तिरुवनंतपुरम, कणूर और कोची में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बैंड का प्रदर्शन करेगी। इसमें तालमेल और अनुशासन के साथ देशभक्ति और लोकप्रिय गानों का प्रदर्शन होगा। वायुसेना का बैंड तिरुवनंतपुरम के निशा गांधी में, कोची सदर नेवल कमांड बैंड एर्णाकुलम के लुलू मॉल में और AG माला नेवल अकेडमी बैंड कणूर के थाजे चौबा में प्रदर्शन करेगा। ये कार्यक्रम आज शाम 6 बजे शुरू होंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है।
6: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मंधास ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान ने इस वर्ष जून में भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला खेली थी। दोनों टीमों ने जनवरी 2024 में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला भी खेली थी। भारत ने 2018 में अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी की थी और तब से दोनों टीमें विभिन्न प्रारूपों में नियमित रूप से परस्पर मैच खेलती रही हैं। समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद फरहत। संसद के मानसून सत्र में छात्रों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के शब्द सभी अखबारों में प्रकाशित किए हैं। अमर उजाला लिखता है, संसद में हर मुद्दे पर जवाब दूंगा, विपक्ष बहस शुरू करे। पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप साबित संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। लोकसभा जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जलते नोट सुलगते सवाल, जनसत्ता सहित कई

0: अखबारों की सुर्खी है। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को दी गई सीख प्रकाशित की है। रेल के दौर में युवा शॉर्टकट नहीं मेहनत का रास्ता चुने। प्रधानमंत्री ने कहा, रेलवे स्टेशन पर लिखी बात अवश्य याद रखें, शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कर्नाटक में गुटखा पान मसाला बनाने बेचने और रखने पर रोक, स्वास्थ्य के लिए सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, भारत में तंबाकू जनित बीमारियों से हर वर्ष करीब 13 लाख से अधिक मौतें होती हैं। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर शिक्षा से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर न रही स्कूली पढ़ाई, चित्रों और शब्दों को मिलाकर अपनी कहानी गढ़ने समझने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए तो ये खेल खेल में सीखने जैसी प्रक्रिया होगी। दैनिक जागरण ने CBSE द्वारा पूरक परीक्षा के परिणाम जारी करने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, CBSE 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम जारी, 53.8% विद्यार्थी हुए पास। डिजी लॉकर और CBSE की वेबसाइट पर देख सकते हैं परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बच्चों को घर से निकालने का आदेश सही बताया। कहा, बुजुर्गों को मिलने वाले सम्मान से ही सभ्य समाज की होती है पहचान। पीठ ने कहा, अनुभवों का खजाना होते हैं बुजुर्ग, अमर उजाला की खबर है। आज विश्व अंगदान दिवस पर नवभारत टाइम्स ने विशेष खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश में अंगदान की कमी बनी चुनौती, भारत में मृतक अंगदान की दर प्रति 10 लाख की आबादी पर 1 से कम। पत्र ने एक और सुर्खी दी है, ट्रांसप्लांट के बाद दवाएं मुफ्त देने की संसदीय समिति की सिफारिश, साल भर में जितने किडनी ट्रांसप्लांट उससे 5 गुना मरीज अब भी कतार में।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपरली के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए। और BCCI ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल रेफर्ड टू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर फर्दर स्क्रूटनी। कलकत्ता हाई कोर्ट कैंसल्स ऑल ओबीसी सर्टिफिकेट्स इश्यूड अंडर रिवाइज्ड रूल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रीवियस तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल। पंजाब फार्मेसी ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट स्टेड बाय हाई कोर्ट ओवर एलिगेशंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग। IMD predicts heavy rainfall in Odisha and Gangetic West Bengal due to formation of low pressure area over North Bay of Bengal. More than 30 civilians including women and children killed in Pakistani airstrikes in Surab district of Balochistan. And in cricket, BCCI confirms India versus Afghanistan T20 international series in September. And now the news in detail. Both Houses of Parliament have given their approval to refer the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee, JPC, for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Minister of State for Home, Nityanand Rai, moved a motion in the Lok Sabha to refer the bill to a JPC comprising members of both the houses for wider consultations. The committee will consist of 21 members from the Lok Sabha nominated by the Speaker and 10 members from the Rajya Sabha nominated by the Chairman. The committee will submit its report to this House by the last day of the first week of the winter session. The Rajya Sabha also approved the motion to nominate 10 members from its side to the Joint Committee for consideration of the FCRA Amendment Bill 2026. Today is the last day of the monsoon session.

0: Launcher. With that, we end the midday news. नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। कोलंबिया ने शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया। और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिन में 19 बैठकें हुई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद में विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने समापन वक्तव्य में सदन की कार्यवाही में बार बार आई बाधा पर चिंता व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि सदन ने 12 विधेयकों को पारित और वापस करके अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा किया।
2: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 start questions, 380 zero hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero hour submissions and 93 special mentions could be taken up. The floor was open but we didn't make the fullest use of the opportunities.
0: श्री राधाकृष्णन ने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही केवल 37 घंटे 49 मिनट चली, जिससे सदन में 39.17% ही कामकाज हुआ। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में हल्द्वानी में अपनी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में किए गए हवन का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने भाषण में किसी समुदाय और धर्म का उल्लेख नहीं किया।
3: मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी सदन में सालों से यहाँ हूँ और मिथिला, लेकिन मैं एक शुरू कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ।
0: सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को आश्वस्त किया कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच की जाएगी।
4: बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटी, नंबर वन। नंबर टू, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, ये उचित नहीं है।
0: संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957

0: में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी आयोजित की है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में कोयले का अधिकतम उत्पादन किया गया है।
1: भारत सरकार चाहते हैं मिनरल का रेट

0: सांसद बहस चर्चा और निकाय कराने के लिए है। मानसून सत्र में लगातार नारेबाजी और विरोध सदन के कामकाज को प्रभावित किया।
1: डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी में डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं, ये तरीका होता है, क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए। तो पहले बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष को लोकतंत्र या संसदीय परंपराओं में कोई विश्वास नहीं है।
2: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी, इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
3: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में

0: क्या न्याय है? राहुल गांधी क्या बोलते हो आप? क्या ये FIR जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
1: इस बीच झारखंड में विद्यार्थियों का आंदोलन जारी है, ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: रांची में आंदोलनकारी छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेरने की रणनीति संबंधी जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री आवास के निकट पूरे कांके रोड में ऊंची बैरिकेडिंग लगाई गई है। कड़ी सुरक्षा और रूट डायवर्जन को लेकर इस मार्ग पर आवागमन भी बाधित है। इधर भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आंदोलनरत छात्रों की मांगों को जायज ठहराया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकट्टा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2000 अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली कला, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रुपए की राशि और अकादमी पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि के साथ साथ ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम दिया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार विजेता आधुनिक भारत की प्रतिभा और निष्ठा के प्रतीक हैं। उन्होंने

0: कहा कि देश की संगीत, नृत्य और लोक रंगमंच की कई विधाएं हैं।
1: कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्य की बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तो हस्त कौशल से लेकर संगीत और नृत्य तथा मनुष्यों के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है।
0: गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज तिरंगा फहराने के साथ साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है और हर भारतीय में गर्व की भावना जागृत कर रहा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
2: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किले में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमरीकी ताने बाने में भारतीय अमरीकी समुदाय के बढ़ते योगदान को सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल ही में डेलावेयर राज्य के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने आदेश पर हस्ताक्षर कर पहले न्यूयॉर्क, जर्सी और मैसाचुसेट्स ने ये आदेश जारी किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दालास प्रियेजा ने जबरदस्त भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया है। कोलंबिया में इस सप्ताह सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में 265 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,494 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कोलंबिया में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत कोलंबिया को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टियन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आपका स्वागत है।
1: आपके साथ अल्पना कपूर। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज पूरे भारत की तस्वीर बदल रही है। चारों तरफ सकारात्मक परिवर्तन लगातार हो रहे हैं। आज के युग में हर व्यक्ति के अंदर सीखने की प्रतिस्पर्धा, वो कुछ न कुछ नया करना आता है। इस तरह हर व्यक्ति अपनी सोच का दायरा लगातार बढ़ा रहा है कि हम अपने को इस तरह बदलें, कुछ नया करें जो भीड़ से अलग हो। यानी हमारे कार्य व्यवहार इतने अलग हों कि बदलते समय में हम अपने को परिवर्तित करके हर तरह से सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करें। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आज का युग तेजी से बदलते विचारों, नई तकनीकों और रचनात्मक सोच का युग है। और हम अपने आसपास ये देख भी रहे हैं कि जो व्यक्ति देश, समाज या समय के साथ नए विचारों को अपना रहा है, वो ही आगे भी बढ़ रहा है। ये सच नहीं है, बल्कि समय के अनुरूप परिवर्तन और सुधार बेहद जरूरी है। मनुष्य अपने जीवन को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रयास करता रहा है। कभी बैलगाड़ी से यात्रा करने वाला इंसान आज हवाई जहाज और अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। पहले जहां शिक्षा पुस्तकों तक सीमित थी, वहीं आज डिजिटल माध्यम ने ज्ञान को हर व्यक्ति तक पहुंचा दिया है। ये सभी कुछ संभव हुआ है नवाचार यानी इनोवेशन के माध्यम से। आज वही व्यक्ति सफल होता है जो जीवन में आने वाली हर चुनौती को अवसर में बदलने का साहस रखता है। इसीलिए आज नवाचार केवल विकास का माध्यम नहीं है, बल्कि उन्नति की पहचान बन चुका है। श्रोताओं, हमारी आज की भेंटवार्ता का विषय भी इसी से संबंधित है। विषय है नवाचार के माध्यम से उन्नति करना। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डेटा साइंस इंजीनियरिंग और डीप टेक स्टार्टअप के संस्थापक आर्यन राजपूत को। आर्यन जी नमस्कार, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्ते।
1: श्रोताओं, नवाचार के माध्यम से उन्नति करना, चलिए अब हम इस विषय पर अपनी बातचीत शुरू करते हैं। आर्यन जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके अनुसार नवाचार का वास्तविक अर्थ क्या है?
2: नवाचार का वास्तविक अर्थ है किसी पुरानी समस्या का नया और बेहतर समाधान खोजना। यह केवल आविष्कार नहीं है, बल्कि मौजूदा चीजों को और अधिक उपयोगी बनाने की प्रक्रिया है। सरल शब्दों में कहें तो नई सोच से नया निर्माण ही नवाचार है।
1: जो आज का समय चल रहा है, इस समय में इनोवेशन क्यों जरूरी हो गया है?
2: आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। जलवायु परिवर्तन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य संकट जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए पुराने तरीके पर्याप्त नहीं है। नवाचार ही वह शक्ति है जो हमें इन समस्याओं को स्थायी और टिकाऊ समाधान दे सकती है। इसलिए आज नवाचार अनिवार्य हो गया है।
1: तो केवल क्या नई तकनीक ही नवाचार कहलाती है, या इसमें जो नए विचार हैं वो भी शामिल है?
2: नहीं, नवाचार केवल तकनीक तक सीमित नहीं है। एक शिक्षक का नया पढ़ाने का तरीका, एक किसान की नई खेती के तरीके या एक सामाजिक कार्यकर्ता का नया विचार, ये सभी नवाचार हैं। तकनीक नवाचार का एक माध्यम है, इसलिए नवाचार की शुरुआत हमेशा एक नए विचार से होती है।
1: जैसा आपने कहा कि नवाचार की शुरुआत जो है वो एक नए विचार से होती है, तो ये नवाचार किस प्रकार व्यक्ति के विकास में सहायता करता है?
2: नवाचार समाज के हर क्षेत्र में विकास लाता है। स्वास्थ्य में बेहतर उपचार, शिक्षा में नए तरीके, कृषि में नए उत्पादन और परिवहन में सुगमता, यह सब नवाचार का परिणाम है। नवाचार समाज के जीवन की गुणवत्ता को ऊपर उठाता है और लोगों को जीवन को आसान बनाता है।
1: अभी आपने जिक्र किया कि शिक्षा का, तो हम ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार की क्या भूमिका है, किस तरह की भूमिका है?
2: शिक्षा में नवाचार ने सीखने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। डिजिटल क्लासरूम, AI बेस्ड लर्निंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे टूल्स ने शिक्षक को सुलभ और रोचक बनाया है। नवाचार के कारण एक गांव का बच्चा वर्ल्ड क्लास शिक्षा भी प्राप्त कर सकता है।
1: तो युवाओं को नवाचार की ओर हमें अगर प्रेरित करना है तो क्या क्या करना चाहिए?
2: युवाओं को नवाचार की ओर प्रेरित करने के लिए उन्हें समस्याओं को अवसर के रूप में देखना चाहिए। हैकाथन, स्टार्टअप कॉम्पिटिशन, मेंटोरशिप प्रोग्राम और इनोवेशन लैब इनमें सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। साथ ही असफलता से ना डरने की मानसिकता विकसित करना भी जरूरी है।
1: तो जैसे छोटे शहर हैं या गांव हैं, तो उनमें भी क्या नवाचार की आज संभावनाएं हैं?
2: बिल्कुल है, छोटे शहरों और गांव में समस्याएं अधिक हैं और इसलिए नवाचार की संभावनाएं भी अधिक हैं। कृषि तकनीक, जल संरक्षण, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा,

0: एवं क्षेत्रों में नवाचार की अधिक जरूरत है। आज कई ग्रामीण युवा लोकल प्रॉब्लम का इनोवेटिव सॉल्यूशन देकर राष्ट्रीय पहचान बना रहे हैं।
1: जैसे अभी आपने ये सारी चीजें बताई, तो क्या भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए और अधिक कौन-कौन से प्रयास किए जा रहे हैं?
0: भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे योजनाओं को शुरू किया है। IITs और IIMs में इनोवेशन सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा नीति आयोग भी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
1: जैसे आप भी एक स्टार्टअप के फाउंडर हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि स्टार्टअप संस्कृति जो है, वो नवाचार को उसमें किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है?
0: स्टार्टअप संस्कृति ने नवाचार को एक आंदोलन का रूप दे दिया है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। युवा अब नौकरी मांगने की बजाय नौकरी देने वाले बन रहे हैं। स्टार्टअप ने साबित किया है कि एक अच्छे विचार से बदलाव लाया जा सकता है।
1: अभी आपने बताया कि एक अच्छे विचार से बदलाव हम ला सकते हैं, तो मैं अब अगला प्रश्न आपसे ये करना चाहूंगी कि नवाचार यानी कि इनोवेशन और रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है?
0: क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता एक नया विचार सोचने की क्षमता है, जबकि इनोवेशन उस विचार को वास्तविकता में बदलने की एक प्रक्रिया है। सरल शब्दों में कहें, क्रिएटिविटी मन में होती है और इनोवेशन दुनिया में दिखती है। दुनिया एक दूसरे से पूरक है, बिना क्रिएटिविटी के इनोवेशन नहीं होता।
1: अभी आपने बताया कि अगर हम कई बार उसमें असफल हो गए हैं, तो क्या असफलता भी ये इनोवेशन का एक प्रोसेस है उसकी?
0: हाँ बिल्कुल, असफलता नवाचार की सबसे बड़ी पाठशाला है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार असफलता देखी। हर असफलता हमें बताती है कि क्या काम नहीं करना चाहिए, और यही ज्ञान हमें सही समाधान की ओर ले जाता है। असफलता से घबराना नहीं है, बल्कि उससे हमें सीखना चाहिए।
1: इनोवेशन से रोजगार के अवसर जो हैं, वो किस किस तरह से बढ़ सकते हैं?
0: इनोवेशन नए उद्योग, नए प्रोडक्ट और नई सर्विस को जन्म देता है, जिससे रोजगार के नए अवसर बनते हैं। जैसे IT इंडस्ट्री, ई कॉमर्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सभी नवाचार की देन हैं। लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। नवाचार न केवल जॉब्स क्रिएट करता है, बल्कि पूरी इकोनॉमी को गति देता है।
1: आर्यन जी, अगला प्रश्न हमारा आपसे ये होगा कि पर्यावरण संरक्षण में नवाचार की क्या भूमिका हो सकती है?
0: पर्यावरण संरक्षण में नवाचार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वाटर रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल फार्मिंग जैसे नवाचार पर्यावरण को बचाने में सहायक है। नवाचार के माध्यम से हम विकास और पर्यावरण दोनों को एक साथ निभा सकते हैं।
1: क्या AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में नवाचार का प्रमुख आधार बनेगी?
0: निश्चित रूप से AI भविष्य के नवाचार की रीढ़ बनेगी। AI पहले से ही हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और फाइनेंस में क्रांति ला रहा है। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की मदद से ऐसी समस्याओं का समाधान हो रहा है जो पहले असंभव लगती थी। आने वाले दशकों में AI ड्राइविंग इनोवेशन ही दुनिया की दिशा तय करेगा।
1: अब मैं आपसे आर्यन जी ये जानना चाहूंगी कि आप अपने जीवन का कोई ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा उदाहरण बताइए जिसमें इनोवेशन ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया हो।
0: मेरे जीवन में डेटा साइंस और डीप टेक के साथ साथ मेरी यात्रा ही एक बड़े बदलाव की कहानी है। जब मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया, तब मैंने महसूस किया कि टेक्नोलॉजी की मदद से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कितना प्रभावी तरीके से सुलझाया जा सकता है। उस अनुभव ने मेरी सोच और जीवन दोनों को अपने तरीके से बदल दिया।
1: आपने ये बहुत अच्छी बात बताई और इससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी। तो स्टूडेंट्स के अंदर नवाचार की ये सोच विकसित हो, इसको विकसित करने के लिए हमारे जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उन्हें क्या क्या करना चाहिए?
0: स्कूल और कॉलेज इनोवेशन लैब, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और स्टूडेंट्स को रियल प्रॉब्लम्स पे काम करने का मौका देने में, और इंटरप्रेन्योर व इनोवेटर्स की गेस्ट स्पीकर्स के रूप में बुलाना, रटने की बजाय सोचने और पूछने की संस्कृति को विकसित करने के साथ साथ, यह कुछ कारण हैं जिनके
1: जिनसे
0: थ्रू।
1: मतलब बच्चों के अंदर ये वाली सोच विकसित करी जा सकती है।
0: जी
1: स्कूल
0: बिल्कुल,
1: और कॉलेज अगर ये प्रयास करें तो बच्चे इस तरफ ज्यादा तेजी से आगे बढ़ पाएंगे।
0: जी बिल्कुल।
1: जी, तो पारंपरिक सोच जो होती है हमारी और आपकी और नवाचार, इसमें क्या बाधा बनती है?
0: पारंपरिक सोच कभी कभी बाधा बन सकती है, लेकिन हमेशा नहीं। पारंपरिक सोच में बहुत ज्ञान होता है। असली बाधा यह है कि यह पहले से होता आया है वाली मानसिकता। जब हम नई संभावनाओं के लिए अपना मन बंद कर लेते हैं, तभी परंपरा बाधा बनती है। परंपरा और नवाचार का संतुलन ही

0: सबसे अच्छा मार्ग है।
1: हाँ, ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही कि हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं या पुरानी तकनीक हैं, वो हर तरह से गलत नहीं है। आपने कहा जब हम अगर अपना सोचना बंद कर देते हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम अपनी सोच को वहीं पे ब्रेक कर देते हैं, हमारी जो परंपराएं हैं ये गलत हैं और आगे जो चीज हो रही है वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है
0: जी बिल्कुल।
1: जी। और अगला प्रश्न मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नवाचार के लिए सबसे जरूरी गुण कौन कौन से हैं? क्या हर व्यक्ति किस तरह से नवाचारी बन सकता है? ये भी हम कह सकते हैं कि नवाचारी बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए?
0: नवाचार के लिए सबसे जरूरी गुण है जिज्ञासा, रचनात्मकता, धैर्य, जोखिम उठाने की क्षमता और समस्याओं को अवसर के रूप में देखने की दृष्टि। नवाचार बनने के रोज के नई चीजें सीखें, लाइक अपने आसपास को समस्याओं पर ध्यान दें, पढ़ने की आदत डालें और अपने आइडियाज़ को एक्शन में बदलने का साहस करें। नवाचार कोई विशेष प्रतिभा नहीं है, यह एक आदत है जो कोई भी विकसित कर सकता है।
1: बिजनेस के क्षेत्र में देखिए अगर हम, तो व्यापार की सफलता में नवाचार कितना महत्वपूर्ण है?
0: व्यापार में नवाचार उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए सांस। जो कंपनियां इनोवेट नहीं करती वह पीछे रह जाती हैं। नोकिया और कोडक इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। दूसरी ओर एप्पल, गूगल और अमेजोन जैसी कंपनियां लगातार नवाचार के कारण शीर्ष पर हैं। नवाचार व्यापार को कॉम्पिटिटिव, रिलेवेंट और प्रॉफिटेबल बनाए रखता है।
1: भारत को इनोवेशन हब बनाने के लिए और क्या-क्या कदम उठाने चाहिए?
0: भारत को इनोवेशन हब बनाने के लिए हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान देना जरूरी है, जिसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अधिक निवेश और टियर 2 टियर 3 शहरों में इनोवेशन इकोसिस्टम विकसित करना यह भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अगर भारत के बड़े शहरों को इनोवेशन की ओर ले जाएंगे तो हमारे छोटे शहर पीछे रह जाएंगे। और संस्कार, उद्योग और शिक्षा संस्थानों को मिलकर काम करना होगा।
1: भविष्य में किन किन क्षेत्रों में नवाचार के लिए सबसे अधिक संभावनाएं हैं?
0: डिजिटल युग में नवाचार को पहले से ही कई अधिक सुलभ और तेज बना रखा है। आज एक युवा अपने घर से ही ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन बना सकता है। इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग और ओपन सोर्स टूल्स का हेल्प, AI प्लेटफॉर्म ने इनोवेशन की कॉस्ट और टाइम दोनों के लिए काम कम कर दिया है। डिजिटल युग में नवाचार को पहले से ही कई अधिक सुलभ कर दिया है और आज एक युवा अपने घर से ही ग्लोबल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बना सकता है। इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग, ओपन सोर्स टूल्स और AI प्लेटफॉर्म ने इनोवेशन की कॉस्ट को काफी कम कर दिया है, जिसकी मदद से हमारा समय भी बहुत कम खर्च होता है। डिजिटल युग में एक अच्छा आइडिया ही सबसे बड़ी पूंजी है।
1: अरिन जी, आप डेटा साइंस में इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, साथ ही एक डीप टेक स्टार्टअप के आप संस्थापक भी हैं। इस विषय में भी हमारे श्रोताओं को आप विस्तार से बताइए, अपने कार्य के विषय में भी।
0: मैं डेटा साइंस इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, जो कि आज सबसे तेजी से बढ़ती हुई फील्ड है। डेटा साइंस की मदद से हम अपनी मात्रा में डेटा से मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल सकते हैं। मेरा डीप टेक स्टार्टअप इसी दिशा में काम कर रहा है। हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का समाधान खोज रहे हैं। यही यात्रा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अत्यंत संतोषजनक है। मैं डेटा साइंस में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। आज की सबसे तेजी बढ़ती हुई फील्ड डेटा साइंस की मदद से हम बड़ी मात्रा में डेटा से मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल सकते हैं। मेरा डीप टेक स्टार्टअप भी इसी दिशा में काम कर रहा है। हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का समाधान खोज रहे हैं। यह यात्रा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अत्यंत संतोषजनक भी है। मेरा मानना है कि भारत में युवाओं को इतनी प्रतिभा की और हम दुनिया के सामने कुछ बड़ा कर सकते हैं।
1: अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी आर्यन, कि हमारे आज के युवा नवाचार के माध्यम से लगातार उन्नति करें, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मेरा युवा साथियों से यही संदेश रहेगा कि अपने सपनों पर विश्वास रखें, समस्याओं को अवसर की तरह देखें, असफलता से मत डरिए, क्योंकि हर असफलता आपको सफलता के करीब ले जाती है। अपने आसपास की छोटी छोटी समस्याओं में बड़े बड़े सॉल्यूशन छुपे हुए हैं, बस उन्हें खोजने की हिम्मत रखिए। याद रखिए, नवाचार कोई विकल्प नहीं है, वह भविष्य की भाषा है।
1: आर्यन, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने अपना कीमती समय देकर हम सभी को नवाचार के माध्यम से उन्नति करना, इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप भविष्य में लगातार उन्नति के शिखर पर पहुंचे, इसके लिए आपको हम सभी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आर्यन, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए।

0: और आपने अपना कीमती समय देकर हम सभी को नवाचार के माध्यम से इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही भविष्य में आप लगातार उन्नति के शिखर पर पहुँचे, इसके लिए हम सभी की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं।
1: भारत के युवा साथी, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है। हमारे पास प्रतिभा है, संसाधन है, बस जरूरत है तो एक जुनून की। अपने सपनों को छोटा मत समझिए। गांव हो या शहर, अमीर हो या गरीब, नवाचार की कोई सीमा नहीं होती। जब आप किसी समस्या को देखें तो यह मत सोचिए कि कोई इसको सुलझाएगा, बल्कि यह सोचिए कि मैं इसको सुलझा सकता हूँ। भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए हम अपना पूरा सहयोग दें। जय हिंद।
0: तो श्रोताओं, आज की इस भेंटवार्ता को सुनकर हमारे सभी श्रोता भी जरूर प्रेरित हुए होंगे, क्योंकि श्रोताओं, प्रतिभा हर व्यक्ति के अंदर छिपी होती है और वो उम्र की मोहताज नहीं होती। यदि अभी तक आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो जरूरत है पहला कदम उठाने की, जरूरत है छिपी हुई प्रतिभा के बीज को अंकुरित करने की। और जब हम अपने अंदर छिपी प्रतिभा के बीज को अंकुरित करेंगे तो वो भी जरूर पल्लवित और पुष्पित होगा, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक ना एक गुण ऐसा जरूर होता है जो दूसरे लोगों में नहीं होता है। तो आज से ही आप अपने विचारों को टटोलिए, खंगालिए कि आप भी कुछ नया आविष्कार करके उन्नति कर सकते हैं। श्रोताओं, आज की स्नेह भारती का विषय था नवाचार के माध्यम से उन्नति करना, और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डेटा साइंस इंजीनियरिंग एंड डीप टेक स्टार्टअप के फाउंडर आर्यन राजपूत, और इस कार्यक्रम का निर्माण किया था रोजलिन मैथ्यू ने। तो श्रोताओं, अब आज के स्नेह भारती कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। चलते चलते मैं यही कहूंगी कि कल्पना से सृजन होता है और सृजन से उन्नति, यानी हर नई सोच में छिपी है उन्नति की नई दिशा। इन्हीं शुभ विचारों के साथ अब अनुमति दीजिए अल्पना कपूर को। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। नेहा आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको मेरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नेहा शर्मा का नमस्कार।
1: क्या हाल है
2: भाई? हाल तो ठीक है।
1: आज हमने देखा आपको कि एक तो सजीव प्रसारण में आप लगातार बोल रही थी
2: जी।
1: और उसके पहले मैंने देखा कि हाथ में कुछ क्रोशिया का बिनाई भी कर रही थी और साथ में अखबार के बंडल भी लिए हुए थी पढ़ रही थी। तो ये काम के साथ साथ एक साथ इतने सारे शौक निभा लेती हैं?
2: वो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि देखिए काम तो करना ही है ममता जी, लेकिन साथ में अगर कुछ ऐसे काम कर ले जाए जिससे मन बड़ा प्रसन्न रहे तो अच्छा लगता है। शौक हमारे ये अच्छे रहते हैं।
1: हाँ, और ये शौक बचपन से डेवलप होना चाहिए
2: जी।
1: अगर बच्चों में, छोटा बच्चा नहीं जानता कि उसको क्या शौक है, लेकिन माता पिता देखते हैं। मेरा तो ये कहना है कि मेरा जो निजी अनुभव और निजी सोच है वहाँ ये बताना चाहती हूँ कि अभी माता पिता और परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर की ओर उन्मुख करना चाहिए, क्योंकि जब वो बड़े हो जाते हैं, नौकरी पेशा करने लगते हैं और जाहिर सी बात है कि आपके पास दोहरी तेरी जिम्मेदारियां हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर फील होता है आपको और कहीं ना कहीं तनाव महसूस होता है। तो ऐसे में अगर आपके काम के साथ कोई अलग भी शौक है, हुनर है, तो आप उसमें अपने को डाइवर्ट करके खुश रह सकते हैं। मान लीजिए हम दफ्तर में, हम या आप सभी दफ्तर में 8 घंटे 9 घंटे काम करते हैं और अभी तो बहुत सारी कंपनियों में, बहुत सारी जगहों में 12-12, 14-14 घंटे काम होते हैं। तो इतना काम करने के बाद एक ऐसा समय होना चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए खुद के लिए जहां पर आप अपने मन का करें, अपने शौक पूरे करें।
2: बिल्कुल। और जैसे कि ये कह सकते हैं इन दिनों तो, क्योंकि ज्यादातर काम तो स्क्रीन के थ्रू ही होते हैं, आप कंप्यूटर देख रहे हैं, आप फोन देख रहे हैं, कुछ भी अगर वर्क फ्रॉम होम भी करें तो आप कंप्यूटर और फोन से जुड़े रहना पड़ता है पढ़ाई के लिए भी। तो ऐसे समय में जब हम अपने किसी शौक की तरफ जाते हैं तो कुछ देर उससे भी दूर हो जाते हैं, तो क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन या ऐसा हम जब स्क्रीन देखते रहते हैं तो हमारा दिमाग थोड़े अलग तरह से चलता है, और जब हम अपने शौक की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे शांत भी हो जाते हैं और बहुत सी अच्छी अच्छी गतिविधियां हमारे मन में होती है, भावनाएं अच्छी आती है।
1: और कई नकारात्मक बातें जब होती है कहीं इर्द गिर्द तो वो आप भूल जाते हैं
2: जी।
1: तो इसलिए आप अपने कामकाज के साथ साथ कोई ना कोई शौक जरूर पालिए, और वो कहते हैं शौक का नशा होना चाहिए। तो हमने तो इतनी सारी बातें कह दी, लेकिन श्रोता क्या कहना चाहते हैं, मुझे कुछ कहना है जो एक सेगमेंट है उसके अंतर्गत हमें इंतजार है कि हमारे श्रोता अपने अनुभव साझे कि वो अपने काम के साथ किस तरह के शौक पालते हैं, कि पढ़ाई लिखाई का शौक है उन्हें, पिक्चर देखने का, घूमने का, या फिर कुछ बिनाई कढ़ाई का शौक है, पेंटिंग का शौक है, चित्रकारी का शौक है, तो अपने अनुभव साझा करें हमारे श्रोता।
2: बिल्कुल। और इसके साथ ही आज हम लोग कुछ विषय और भी लिए आए हैं उनके लिए, जैसे आज विश्व अंगदान दिवस है तो इस पर बातें होंगी, और कहानी पद्मश्री की में आज हम लेने वाले हैं पेट्रिशिया मुखीम की बातें, समाज सेवा से वो जुड़ी हैं।
1: और कई बार ये तो शौक की बातें हमने की
2: जी,
1: जहां पर आप खुश हो लेते हैं, लेकिन कई ऐसे दुखद जगह, दुखद घटनाएं होती हैं, जहां जाते हैं वहां पर भी देखा है लोग कि कहीं शोक मनाने जा रहे हैं और बढ़िया

0: जरी वाली साड़ी पहन के तैयार होकर लिपस्टिक लगाकर, ये महिलाओं की बात है, पुरुषों के लिए भी कि अच्छे शर्ट वर्ट पहन के बढ़िया तैयार होकर गए और वहां पहुंच के बहुत तपाक से किसी से गले मिलना, नमस्ते करना और हाथ मिलाना, लेकिन वहां का एक शिष्टाचार होता है, उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: क्योंकि आप दुख मनाने गए हैं, पता चला कि आप बड़े खुशहाल नजर आ रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। तो
1: दुख में गए हैं तो उस तरह से, मतलब एक अपनी भावना भी उस तरह की होनी चाहिए, दिखावे के तौर पर नहीं, लेकिन एक अपनी भावना, क्योंकि हम गए तो उसी लिए हैं। और साथ ही साथ आज हम जो एक और विषय लिए आए हैं वो है बारिश में कीड़ों के काटने पर क्या उपयोगी टिप्स हम अपना सकते, क्या करना चाहिए हमें।
0: बिल्कुल, तो ये सारी बातें हैं और हमारे श्रोता भी इस बारे में टिप्पणियां करेंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। अब हम सुनवाते हैं श्रोताओं को एक गाना, ये

0: तो हम अपने सखियों सहेलियों को बहुत सी बातें करते रहते हैं ममता जी। और आज विश्व अंगदान दिवस है जो कि हर वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए और इससे जुड़ी जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं कि अंगदान करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं उसे दूर करने के लिए आज का दिन।
1: अब मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है ना कि ये जो भ्रांति है इस बारे में सोचना भी निरर्थक है। अब तो अगर आपके एक अंगदान से किसी की जान बचती है, किसी को जीवन मिलता है, तो इससे बड़ा उपकार क्या हो सकता है? अगर जो लोग ये मानते हैं कि हमें आध्यात्मिक रूप से कोई नुकसान होना है, तो उनको यही मानना चाहिए कि ये तो और उपकार एक तरह का

0: ईश्वर की पूजा पुण्य की तरह पुण्य से जुड़ जाता है, तो इसलिए अंग दान करने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए, न ही ज्यादा उसमें चिंता करनी चाहिए। डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। और अंगदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन को हम याद करते हैं, जैसे गुर्दा, हृदय, अग्नाशय, आंखें, किडनी और फेफड़ी जैसे अंगों का दान गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की जान बचा सकता है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए।
1: हाँ, और ये अंगदान के लिए अगर किसी को करना हो तो इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं भी मौजूद हैं और अपनी सहमति से ही होता है। अगर आप 18 साल के व्यक्ति हैं तो 18 साल के जो भी हैं उन वो अपने अंगदान को जीवित रहते हुए भी आप अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्म होता है, वो आप भर देते हैं और उसके बाद जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके बाद अगर उसने अंगदान करने का ये संकल्प लिया है तो उसके जिन जिन अंगों को वो देना चाहता है वो सभी अंगदान के तहत ले लिया जाता है। और अगर 18 वर्ष से कम की आयु हो और माता पिता चाहते हो, अगर माता पिता ने खुद भी अंगदान किया हो और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी करें तो वो उसके पहले एक फॉर्म भर सकते हैं और उसको अपनी अनुमति से वो अंगदान के लिए कह सकते हैं। हालांकि बच्चा अगर 18 वर्ष का होता है और वो नहीं चाहता है तो वो इस चीज से मना भी कर सकता है। और पहला अंगदान किया गया था 1954 में, रोनाल्ड ली हेरिक ने अंगदान किया था सबसे पहले अपने जुड़वा भाई को, उसने उन्होंने किडनी दी थी और ये सफल एक ऑपरेशन हुआ जिसके तहत दोनों ही स्वस्थ रहे काफी लंबे समय तक। और उसके बाद धीरे धीरे अंगदान का महत्व भी लोगों को समझ में आया और जो हमारा साइंस है किस तरह से तरक्की करा और अब तो बहुत ही अच्छी तरह से ये सारी चीजें हैंडल की जाती हैं। पहले तो कुछ मुश्किलें भी आती थी लेकिन अब इतनी तरक्की हो गई है कि तुरंत ही छुट्टी भी मिल जाती है। इन दोनों जो पहले जिन ऑपरेशंस को बहुत बड़ा माना जाता था वो तो आजकल बिना चीर फाड़ के लेजर के जरिए हो जाते हैं और अंगदान जैसी जो चीजें हैं वो बहुत ही आम होती जा रही है। और जरूरी नहीं है कि आप एक डोनर लिस्ट होती है और उसमें आप जिनको भी अंग चाहिए जिसका जिसे भी कोई गंभीर बीमारी है वो उस लिस्ट में अपना नाम उसमें रख सकते हैं और उसके उनके अनुसार उनकी जो अवस्था है, उनकी आयु है, उनकी किस तरह का रहन सहन है उसे देखकर,
0: उनकी कितनी शारीरिक क्षमता कितनी है
1: वो देखकर इस तरह की लिस्ट को देखा जाता है। और जो भी कोई अंगदान करता है और अंग मिलता है तो उसे इस तरह से तुरंत उन्हें बताया जाता है कि अब एक उनके लिए अंग ऐसा मिला है जिसे वो ले सकते हैं।
0: और एक चीज और है, कुछ अंग के कुछ हिस्सों के लिए पहले से बताना पड़ता है जो मृत्यु के बाद ही हो सकता है, जैसे आंख, नेत्रदान। तो नेत्रदान के लिए आपको पहले जिस फॉर्म का जिक्र आपने किया वो फॉर्म भर लिया जाता है। और आंखों के दान के लिए कुछ समय सीमा होती है, समय उस समय सीमा के अंदर ही आपको नेत्रदान किया जाता है, करना पड़ता है। तो ये बात हो गई। और किडनी और ये सब चीजें तो आप जीवित रहते भी दान करते हैं, लेकिन हाँ इन सब में खतरा बस इतना होता है कि आप अपनी इच्छा से ऐसी मुहिम ना चलाएं या कहीं डॉक्टर को कन्विंस ना करें। डॉक्टर जैसा कहें वैसा ही करना चाहिए कि आप उसके लिए उपयुक्त हैं या नहीं। बहुत सारे लोग ब्लड करने के लिए भी, रक्तदान के लिए भी चिंतित हो जाते हैं कि अरे मेरे शरीर से इतना सारा खून निकल जाएगा तो हमें कमजोरी आ जाएगी। वो डॉक्टर से पूछते भी हैं कि हमें चक्कर वक्कर तो नहीं आएगा। तो ब्लड डोनेट करना तो बहुत आम बात हो गई है आजकल, इसमें कोई भी खतरा नहीं होता है। बस कुछ मिनट के लिए डॉक्टर वहां पे आपको बिठाते हैं रेस्ट करने के लिए, बाकी आप तो रक्तदान कर सकते हैं। तो अंगदान के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके अंगदान से किसी को जीवन मिले तो आपको इस बात से खुश होना चाहिए। और अब एक गीत सुनते हैं।

0: नेहा
1: जी,
0: मोबाइल के स्क्रीन पर आप लगातार कुछ देख रहे हैं। किसी श्रोता ने कुछ लिखा है अंगदान के विषय में क्या?
1: हाँ, बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं हमारे सभी श्रोता, सुधी श्रोता कह सकते हैं, क्योंकि उनको हर विषय में कुछ ना कुछ पता होता है। तो अंगदान के विषय में भी हमारे श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, लोगों को मनन करने और अपने अंगों को दान करने के प्रति जागरूक करता है। मानवीय कार्य किसी के परिवार में खुशियां ला सकता है, किसी की जिंदगी बचा सकता है, तो इसलिए जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हमने एक कहानी उन्होंने बता रही है कि उन्होंने सुनी इंस्टाग्राम पर, 25 साल के गौरव की कहानी, जो ब्रायन दर्द के कारण अपनी जान खो दी उन्होंने, लेकिन अपने सारे अंगों को दान कर दिया और करीब 2 से 2.5 घंटे में उसका जो दिल है उसको अहमदाबाद से शायद गुजरात के सूरत पहुंचाया गया। हम सबको इस कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए और हम सबको अंगदान के विषय में सोचना चाहिए। और उस छोटे से बच्चे को भी बहुत सलाम जिसने छोटी सी उम्र में इतना कुछ देखा और जान जाने के बाद भी उनके माता पिता ने अंगदान किया और कम से कम 4-5 जिंदगी बचा कर वो इस दुनिया से गए।
0: क्या बात है, कितनी सजगता की बात है ये, इससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। और नेहा, जीवन में सुख दुख का सिलसिला तो लगा ही रहता है
1: जी।
0: कहते हैं कि भले ही आप किसी के सुख में शामिल ना हो लेकिन दुख में साथ जरूर निभाना चाहिए। हालांकि सामाजिक तौर पर कई बड़े, मतलब ये हमें पता नहीं चलता है बड़े मौकों पर कि किसी के शोक में कैसे शामिल हुआ जाए। कई बार तो ये भी आता है, लगता है कि बहुत जो नजदीकी लोग हैं और अचानक अगर इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर समझ में नहीं आता कि कैसे ढांढस बंधाए, कैसे हम उनके दुख पर फाहा रखें। लेकिन कुछ बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, और जैसे हम शोक के माहौल में जैसे ही पहुंचते तो आमतौर पर आदत होती कि क्या हुआ था ये हमें जानना है, तो हम पहुंचकर लगातार बार बार पूछताछ करते रहते हैं। सामने वाले व्यक्ति भी आमतौर पर वो चीजें बताते होते हैं क्योंकि उन्हें भी पता होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर वो नहीं भी बता रहे हैं तो हम बार बार उनसे पूछते रहते हैं क्या हुआ, फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ, तो इससे क्या होता है वो उस पल को लगातार उन्होंने बताया होगा आपके पहुंचते तक भी, और बार बार आप उन्हें याद कराते हैं तो मानसिक रूप से वो थक चुके होते हैं कई बार, लेकिन बार बार वो चीजें पूछते रहने से जो शोक में व्यक्ति है वो उससे निकल ही नहीं पाते, कुछ और ज्यादा उसमें गहरा जाते हैं, तो ऐसा करना भी थोड़ा उचित नहीं है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और कई बार लोग शोक में जाते हैं और कुछ ही समय में हंसी मजाक करने लगते हैं, भले आप कई दिनों बाद किसी परिचित से मिल रहे हो, लेकिन मौके को देखकर व्यवहार करना सही रहता है। अब ये जरूरी नहीं कि आप बेवजह रोते रहें, लेकिन शांति से पास में बैठना

चुपचाप बैठना भी एक तरीका होता है और एक कंधे पर अपनेपन से भरा हाथ रखना भी आपकी भावना को दर्शा सकता है। आजकल यहाँ मतलब बड़े शहरों में कहें महानगरों में आजकल ये परंपरा हो गई है कि किसी के विदा होने पर लोगों को ये मतलब एक तरह से बुलाना ही कहते हैं, मैसेज डाल देते हैं, लोग आते हैं तो उनके खाने पीने की व्यवस्था भी कर दी जाती है, चाय नाश्ते की भी व्यवस्था कर दी जाती है, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो लोग वहां भी जाकर खाने खाते पीते समय बातें करते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं कि ये पसंद है वो नहीं पसंद है, अरे ये हम नहीं खाते हैं, फिर वो रेसिपी बताना शुरू हो जाता है कई लोगों को हमने देखा। तो ये ठीक नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था लोग इसलिए करते हैं कि बहुत दूर दूर

0: दी जाती है,
1: जी
0: चाय नाश्ते की भी व्यवस्था कर दी जाती है, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो लोग वहां भी जाकर खाने खाते पीते समय बातें करते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं कि ये पसंद है, वो नहीं पसंद है, अरे ये हम नहीं खाते हैं, फिर वो रेसिपी बताना शुरू हो जाता है कई लोगों को हमने देखा। तो ये ठीक नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था लोग इसलिए करते हैं कि बहुत दूर दूर से आप आए हैं और बेचारे खुद नहीं खाते हैं, आपके खाने की व्यवस्था की, तो वहां पर खड़े होकर मीन मेक निकालना या अपनी पसंद नापसंद जाहिर करना ये भी ठीक नहीं लगता है।
1: और कई बार ये भी बताने लगते हैं कि भाई वो मेरा जो फलाना दोस्त था, वो जो एक रिश्तेदार था, वो भी ऐसे ही हुआ, उसका ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर विस्तार में उसका बताने लगते। कई बार जो शोक संतप्त परिवार है उसी के सदस्य को वो बताने लगते, उन्हें भी कई लोगों से मिलना होता है क्योंकि सब उनसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में आप उन्हें पकड़ कर बैठ जाते हैं और आप उनके दुख को बांटने गए, उनको बढ़ाने तो गए नहीं है, तो ये करने लगते हैं। और कई बार ऐसा होता है क्योंकि इन दिनों बहुत से लोगों की तबीयत खराब रहती है, उतनी अच्छी नहीं होती, कुछ एक खास डाइट उन्हें फॉलो करनी पड़ती है, तो ऐसे में हो सकता है कि आप वहां जाके हो सकता है कि उनकी परेशानी बढ़ा दें। आप कहेंगे मैं तो ये नहीं खाता, मुझे तो ये चाहिए, या मुझे वो नहीं चाहिए, या मुझे तो अभी एक घंटे के अंदर ही खाना चाहिए, मेरे हाथ पैर कांपने लगेंगे। तो इस तरह से अगर जब आप पहुंचते हैं तो कई बार वो परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए ऐसी जगह पर फिर आप फोन के जरिए भी उन्हें अपनी भावनाएं बता सकते हैं और वो यकीन मानिए वो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि इतने लोग आते हैं उस बीच में, अगर आप बाद में भी जाते हैं तो ये ठीक लगता है, बजाय कि आप वहां जाकर अपनी जरूरतों की डिमांड करें कि हमको ऐसे ही रहना है या यहाँ ही बैठना है, तो ये थोड़ी मुश्किलें पैदा कर देता है।
0: बिल्कुल सही बात है। और किसी भी शोकाकुल व्यक्ति के सामने बैठकर ये कहते रहना कि उन्होंने जिस अपने को खोया है उसे क्या क्या काम बाकी रह गए थे, जैसे परिवार में किसी का विवाह जन्म जैसी बातों को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि इसकी शादी देख लेते या नाती पोता देख लेते तो फिर जाते, थोड़ा और रुक जाते, ये कहना भी शोक को कम नहीं करता है बल्कि बढ़ा जरूर देता है। अगर आप ऐसा कहने से पहले ध्यान से सोचे तो आपको ये भान होगा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ अधूरा छोड़ ही जाता है, पूरा नहीं कर पाता है। और मृत्यु किसी के हाथ में तो नहीं होती है ना, मृत्यु तो लिखा होता है, जिस दिन जिसको जाना है वो चला ही जाता है। तो ऐसे में ये सब कहना कि अरे क्या बताएं, छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी सारी जिम्मेदारियां थी, पैसे भी ज्यादा छोड़ के नहीं गए, तो ये जो सुन रहा है ना उसके ऊपर और दर्द का पहाड़ आप तोड़ते हैं,
1: उनको और परेशानियां आप बता रहे हैं, उनकी उनकी क्या क्या परेशानियां आप उन्हें और बता रहे हैं कि क्या क्या जीवन होना है। और कई बार ऐसा होता है आप गए हैं शोक में शामिल होने के लिए, अपना फोन आप देख रहे हैं या फोन आ रहा है आपको, आप जोर जोर से बातें कर रहे हैं कि भाई इसके यहाँ पर हम आए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और आप बताने लगते हैं, तो ज्यादा मत बोले, बेवजह ना बोले, जितनी सहायता आप अपने आप कर सकते हैं वो कर दीजिए, या शोक से भरे जो किस्से हैं कहानियां हैं वो मत सुनाइए, अपने रीति रिवाज मत बताइए। बहुत से लोगों को होता है कि देखिए हमारे यहाँ ये होता नहीं, यही करिए ये कीजिए, तो इस तरह से आप बचिए, क्योंकि अगर आपसे पूछ रहे हैं वो तो जरूर बताइए, अगर नहीं पूछ रहे हैं तो आप रहने दीजिए। आप खुद सोचिए कि आप अगर उनकी जगह होंगे तो कौन कौन सा व्यवहार आपको पसंद नहीं आएगा, तो उसके बाद आप खुद वो व्यवहार नहीं करेंगे उनके साथ।
0: उस समय तो बस शांत भाव से बैठ जाना ही, किसी के कंधे पर हाथ रख देना, सिर पर हाथ रख देना ही बहुत होता है। असल में उस समय शब्द कुछ काम नहीं करते हैं, जब इंसान दुख में होता है तो शब्दों की कोई अहमियत नहीं रह जाती, बस आपके बर्ताव की अहमियत रहती है कि आप हाथ पकड़ के कह दें कि चलो हम हैं आपके साथ, कोई जरूरत हो तो बताना, बस इतना ही काफी होता है। और फिलहाल हमें अब चाहिए कि एक गाना सुनवा दें अपने श्रोताओं को।

0: ये आकाशदीप फिल्म का गाना था, और इस गाने से पहले नेहा हम लोग बात कर रहे थे कि शोक के मौके पर जब हम किसी से मिलते हैं, किसी के
1: जी
0: घर जाते हैं, तो किस तरह से शिष्टाचार का ख्याल रखना चाहिए। हमारी एक सखी है जो लिख रही है कि किसी के यहाँ शोक में जाना सबसे ज्यादा सेंसिटिव विषय है और तमाम सवालों से बचना चाहिए। घर में बच्चे या बूढ़े हों तो उनके खाने पीने के लिए जरूर कुछ लेते जाएं,
1: जी
0: बाकी बातों के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। उस दिन बस मौन रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आपका एक सांत्वना भरा हाथ शोकग्रस्त के लिए बहुत बड़ा संबल होगा।
1: बिल्कुल। और हमारे कुछ साथियों ने और भी बातें लिखी, जैसे एक साथी लिखते हैं कि शोक सभा में जाते हैं तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि आपस में बातें करते रहते हैं, हंसते बोलते रहते हैं, चुप चुप करके। बहुत से लोगों को मैंने, मतलब कहेंगे कि थोड़ा चुप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, जोर से ना करो, लेकिन बातें करते रहते हैं। अगर आप किसी के शोक सभा में गए हैं तो उनके प्रति आपकी संवेदनाएं पूरी हैं, तो वो करें जो परिवार वालों के लिए उस समय होता है, उनके लिए गंभीर मुद्दा है, ये गंभीर बात है। तो ऐसे हंस बोलने की कोई जरूरत नहीं है, जो संवेदना है उसे आप दिखाइए शांति से, उनके पास अगर आप बैठते हैं तो ये ठीक रहेगा, बजाय इस तरह से रहना। और एक साथी कहते हैं कि परिवार में निकट रिश्तेदारों के निधन के कारण बहुत बार शोक सभा में जाना हुआ है। जाने से पहले सोचती कि कोई हल्के कलर की या सिंपल सी साड़ी पहनूं, वही पहनकर जाती, लेकिन वहां जाने पर देखती हूँ कि महिलाएं आजकल फैंसी साड़ियां पहन के आ रही हैं, शोक सभा के दौरान बार बार मोबाइल देख रही हैं, आसपास बैठी महिलाओं से धीरे धीरे बातें कर रही हैं, ऐसा लगता है कि औपचारिकता निभाने के लिए ही वो वहां शामिल हुई हैं।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि रिश्तेदारी या आप अपने मिलने वालों के गम और शोक के समय मैं जरूर शामिल होता हूँ शिष्टाचार के साथ। मैं उनकी शादी ब्याह या अन्य फंक्शंस पर शामिल हूँ या ना हो सकूं किसी भी कारण से, लेकिन किसी भी कारण से मैं शोक में जरूर पहुंचता हूँ।
1: ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वही बात है कि दुख में आप शामिल हो तो जरूरी है। कई बार हम नहीं जा पाते शादी ब्याह में तो वो नाराज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो, जब शोक के समय अगर आप नहीं जाते तो उन्हें जरूर याद रहता है कि कौन आया, किसने उनके मतलब ध्यान रखा, किनसे बातें हुई, ये सारी बातें याद रह जाती मन में।
0: अब नेहा ये बातें हम थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं इन बातों पर, और एक ब्रेक के बाद हम वापस अपने मुद्दे पर आएंगे और बहुत सारे विषयों पर बातें करेंगे।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
3: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
2: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
4: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा हुजूर।
6: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं सखी सहेली और आज ममता जी हम कहानी पद्मश्री की ये सुनाते हैं और इसमें उन महिलाओं की बात करते हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। आज हम बात करने वाले हैं पैट्रिशिया मुकीम की जो समाज सेवा से जुड़ी हैं। मेघालय की पत्रकार, लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने उग्रवाद के खिलाफ उस समय आवाज उठाई जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और इसलिए पैट्रिशिया मुकीम की पहचान एक ऐसी सशक्त महिला के तौर पर होती है जिन्होंने 1970 से 1990 के दौरान मेघालय में फैली हिंसा और उग्रवाद का निडरता से सामना किया।
7: और ये भी बता दें कि ये वो दौर था जब मेघालय में उग्रवाद अपने चरम पर था। शाम होते ही सड़कें वीरान हो जाती, लोग घरों में बंद हो जाते, पूरे समाज में डर फैला हुआ था और तो और स्कूल बंद, व्यापार ठप और आम जनता कुछ कहने से भी डरती। हत्या, अपहरण, फिरौती, धमकी जैसी घटनाएं तो आम हो गई थी। पैट्रिशिया उन दिनों एक आम युवतियों के जैसे पढ़ना पसंद करती थी, उपन्यास में वो खोई रहती थी और एक खुशहाल भविष्य का सपना देखा करती जबकि माहौल वैसा नहीं था।
6: और आखिरकार पैट्रिशिया ने निर्णय लिया कि कुछ और अपने साथ कुछ 20-25 लोगों को वो लेकर सड़कों पर उन्होंने निकलना शुरू किया। ये डर के खिलाफ लड़ने की मुहिम थी क्योंकि कोई निकलता ही नहीं था, तो उन्होंने ये लोग इससे आगे बढ़े इसलिए ऐसा किया। और बाद में वर्ष 1996 में उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा शिलोंग वी केयर और इस संगठन में वो लोगों को जागरूक करने का काम करने लगी। दुकानदारों से वो कहा करती कि शाम के समय भी दुकानें खुली रखें, लोगों को बाहर निकलने के लिए कहती और जिंदगी जीने की बातें करती हैं।
7: और उन्होंने शांति मार्च निकाले, नुक्कड़ सभाएं की, नुक्कड़ नाटक किए और एक ही संदेश दिया कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। उनकी इतनी कोशिशों के बाद लोग भी जुड़ने लगे क्योंकि जनता भी परेशान हो चुकी थी कैद रहते हुए। पैट्रिशिया मुकीम के शांति मार्च में बच्चों से लेकर बड़ों तक हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। सभी ने मिलकर नारे लगाए कि हमें तो उग्रवाद नहीं चाहिए और ये एक बड़ी बात थी क्योंकि ये सभी चाहते थे लेकिन सामूहिक रूप से इस तरह कहने का साहस पहले किसी में नहीं था।
6: बिल्कुल, और ये हुआ क्योंकि इस मामले में एक घटना ऐसी हुई जिसने मुख्य भूमिका निभाई। उग्रवादियों ने एक टेलीविजन की दुकान में जाकर विवाद किया और कुछ निर्दोषों को मार दिया और इसके बाद पैट्रिशिया के संगठन ने एक सभा बुलाई और उसमें और भी लोग शामिल हुए। सभी उग्रवाद से परेशान हो चुके थे क्योंकि आर्थिक विकास को ठप्प करने में भी उग्रवादियों का बड़ा हाथ था। रोजगार, व्यवसाय, स्कूल, जीवन सब कुछ प्रभावित

0: आखिरकार लोगों ने डर के खिलाफ कदम उठाया और इस आंदोलन में सरकार का भी उन्हें साथ मिला। तत्कालीन गृह मंत्री रॉबर्ट गार्नेट लिंगडो ने अपना सहयोग उन्हें दिया और उग्रवादियों की आर्थिक मदद किस तरह से रोकी जाए इसके लिए एक नियम बनाया और जो भी व्यक्ति उग्रवादियों को फिरौती देता तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती, तो लोगों ने फिरौती देना बंद कर दिया और उग्रवादियों को आर्थिक मदद मिलनी बंद हो गई। तो इसका असर यह हुआ कि वो आत्मसमर्पण करने लगे और धीरे धीरे पैट्रिशिया मुकीम की मुहिम को जीत हासिल होने लगी और शांति लौटने लगी।
1: 2015 में अदालत ने निर्देश दिया कि उग्रवादियों के बंद के आह्वान प्रेस विज्ञप्ति को प्रकाशित न किया जाए, इससे भी उनकी गतिविधियां प्रभावित हुई, उग्रवाद की घटनाएं कम से कम होने लगी। पैट्रिशिया मुकीम केवल यही नहीं रुकी बल्कि वो समाज के सुधार को लेकर बहुत सारे अन्य कार्य भी करती रही, जैसे कि उन्होंने पीपल्स रैली अगेंस्ट करप्शन के जरिए जमीन से जुड़े विवाद का विरोध किया। उन्हें गिरफ्तार किया गया फिर भी वो घबराई नहीं, जबकि उस समय वो अकेली महिला थी जिन्हें 45 अन्य लोगों के साथ हिरासत में लिया गया था।
0: जी, और पैट्रिशिया मुकीम ने ऑनलाइन लॉटरी के खिलाफ भी अभियान चलाया। मेघालय इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल में भी राज्य के भविष्य के लिए उन्होंने काम किया। द शिलोंग टाइम्स की संपादक रह चुकी पैट्रिशिया मुकीम को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है, लेकिन साल 2000 में उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: सामाजिक संघर्षों और कार्यों में पूरी तरह समर्पित पैट्रिशिया मुकीम निजी जीवन में अपने बीते को खोने के गहरे दर्द से जूझती, अपने बेटे को खोने के दर्द से जूझती रही। आज भी समाज के लिए सक्रिय है। तकरीबन 17 बरस की उम्र में वो आज भी योग करती हैं, पहाड़ी रास्तों पर चलती हैं, पर्यावरण बचाने के लिए अभियान चलाती हैं, आदिवासी अधिकारों लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लगातार अपनी बुलंद आवाज आज भी उठाती हैं। उनका मानना है कि अगर बदलाव लाना है तो एकजुट होना होगा क्योंकि जब सब साथ खड़े होते हैं तभी बदलाव आता है।
0: और तकरीबन 70 वर्ष की पैट्रिशिया मुकीम हमें सिखाती है कि कभी कभी एक निडर आवाज भी लोगों को एकजुट करने में सहायता करती है। किसी एक का साहस हो तो सभी में वो साहस हो जाता है, उन्हें देखकर सब साहस करते हैं और समाज डर हिंसा और अन्याय से आगे बढ़कर शांति और लोकतंत्र कायम कर सकता है।
1: तो इस बात से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि बूंद बूंद से सागर बनता है। एक पैट्रिशिया का हाथ आगे बढ़ा और कारवां बढ़ता गया और उन्होंने विजय पाई, पद्मश्री सम्मान से उन्हें नवाजा गया।
0: जी,
1: अब गाना सुनते हैं ये।

0: हाँ तो नेहा, हमने शुरुआत में बताया था कि श्रोताओं से हमने ये शौक के बारे में पूछा था, लेकिन बहुत सारे श्रोता तो अभी लिख नहीं रहे। हमें लगता है हमारे श्रोताओं को विविध भारती सुनने के अलावा और कोई शौक नहीं, क्योंकि हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि शौक तो बहुत से थे, अब सिर्फ विविध भारती प्रोग्राम के ही सुन पा रहे हैं। उनमें से कोई प्रोग्राम मिस कर जाता हूँ, अब से 8 बजे तक अनवरत मोबाइल पर VBS के प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, ऑफिस का काम भी चलता रहेगा। भाई, विविध भारती सुनने का शौक तो सबसे उम्दा शौक है, इस शौक को आप कायम रखिए, लेकिन इसके अलावा जब भी वक्त मिले इसके साथ साथ और भी शौक कर सकते हैं। विविध भारती सुनते हुए आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, निटिंग कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं,
1: क्या क्या भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। रेडियो के साथ सब चीजें की जा सकती है, ऐसे ही तो मतलब हमने शुरुआत सी, ऐसे ही तो सब बड़े हुए हम सब।
0: सही बात,
1: रेडियो सुनते सुनते सारे काम करते करते,
0: और रेडियो सुनते सुनते अगर हम काम करते हैं तो कल्पनाशीलता का विस्तार भी होता है, क्योंकि हम सोच रहे होते हैं, विविध भारती सुन रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से एक दृश्य खींच रहे होते हैं उस समय,
1: और एक मेडिटेशन जैसा हो जाता है। एक समय के बाद में हमें सब सुनाई दे रहा होता है, फिर हम अपने काम में भी डूबे रहते हैं, लेकिन किसी ने रेडियो बंद कर दिया तो पता चलता है कि अरे हम सुन रहे थे। ऐसा लगता है ना कि आप अपने काम में डूबे हुए हैं तो बंद कर देते हैं, लेकिन ध्यान रहता है। हमारे एक साथी ने जरूर लिखा है कि उन्हें बागवानी का बहुत शौक है, इसके लिए मैं शनिवार रविवार को जरूर समय निकालती हूँ। पेड़ पौधों की गुड़ाई करना, कटाई छटाई करना या नए पौधे लगाना, और ये छुट्टी वाले दिन जरूर करती हूँ। मुझे गमलों में पेंटिंग करना, तरह तरह से क्यारियों को सजाना भी बहुत पसंद है, इसके लिए समय निकल ही जाता है। और रेडियो सुनना और विविध भारती पेज पर कमेंट करने के लिए काम से थोड़ा समय चुरा ही लेती हूँ। तो कितनी अच्छी तरह से वो अपना पूरा समय मैनेज कर रही है ना।
0: और बहुत सारे श्रोताओं ने और भी बातें लिखी। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें कुकिंग का शौक है, खाना बनाने का शौक है, रेडियो सुनते सुनते हम खाना बना लिया करते हैं। और विविध भारती के शौक के बारे में और भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हमें तो विविध भारती सुनने का बहुत शौक है।

0: और एक श्रोता ने कुछ अलग सी बात लिखी है। वो ये लिख रहे हैं कि आपने शोक के बारे में बात की थी और गाना सुनवाया था जुल्मे संग आंख लड़ी रे, तो क्या गाना सुना दिया जुल्मे संग आंख लड़ी? 1% चैनल पर आने वाले ऐसे लोग हैं जो किसी के दुख दर्द में जाते हैं और बढ़िया बढ़िया साड़ी भी पहनते होंगे, अपने घर की पुण्यतिथि कभी नहीं मनाते मगर दूसरों की उस दिन जन्मदिन जरूर मनाते हैं, एक प्रतिष्ठित चैनल पर होता है जो गाना सुनाते हैं। तो इनके लिए शायद ये विविध भारती के लिए इनकी बात है, तो इनको स्पष्ट कर दे कि आज कोई शोक का दिन नहीं है, ये तो हम एक शिष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि सखी सहेली ऐसा प्रोग्राम है नेहा जिसमें हम हर मुद्दे पर बात करते हैं, महिलाओं के बारे में बात करते हैं, जहां महिलाओं के आगे बढ़ने की बात हो, जहां उनके शिक्षा की बात होती है, उनकी कामयाबी की बात होती है, उनके करियर की बात होती है, और तमाम मुद्दे हैं, खेल है, पढ़ाई लिखाई, कुकिंग से लेकर हर मुद्दे पर हम बात करते हैं। तो इसी के तहत ये मुद्दा उठाया, तो जहां पर शिष्टाचार की बात है
1: जी, तो लेकिन ममता जी एक बात तो ये भी हम कहना चाहेंगे इनसे कि शायद ये बहुत ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि जुल्मी संग आंख लड़ी गीत से तो हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी
0: बिल्कुल,
1: और जब हमने शोक से संबंधित बातें की तो उसके अनुरूप ही गीत हमने सुनवाया जिसे हमारे सभी श्रोताओं ने सुना है और उन्हें पता है कि असलियत क्या है, और जिन्होंने नहीं सुना हम तो कहेंगे इन श्रोता को कि 3 बजे रात में भी इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होता है तो वो जरूर उसे सुने और उसके बाद ही कोई निर्णय लें, है ना।
0: और अब एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, इसके लिए मेरा रविवार फिक्स होता है, बहुत कुछ सीखा भी, जैसे कि धैर्य का गुण हमने सीखा। और एक श्रोता ने और लिखा है कि मुझे बागवानी का शौक है, मतलब बागवानी का शौक बहुत सारे लोगों
1: और हमारे एक श्रोता ने लिखा कि हमको तो खाली समय में एडिटिंग का शौक है, मैं हमेशा 4 से 5 घंटे एडिटिंग करता हूँ, तो ये भी एक अच्छा शौक है, कुछ उससे कुछ उन्हें मिल रहा होगा, कुछ चीजें सीख रहे होंगे कि एडिटिंग करना भी एक अपने आप में गुण है और वो शौक के साथ साथ कभी कभी काम में भी बदल जाता है, अगर काम ही उनका शौक है तो बहुत अच्छी बात है।
0: बिल्कुल, कुछ लोगों को दिन भर मोबाइल देखने का भी शौक होता है
1: जी, तो इस शौक से मुक्ति पाना जरूरी है
0: बच्चे, क्योंकि ये शौक बहुत खतरनाक होता है, इससे आपका वक्त बहुत सारा खा जाता है मोबाइल, और आप अपने जो शौक है उन्हें जान ही नहीं पाते। सबसे बड़ी बात तो ये है नेहा कि आपके शौक क्या है उन्हें पहचानिए, खास तौर से छोटे बच्चों के भीतर कई बार हम बहुत सारे हुनर देखते हैं लेकिन उन्हें सही दिशा नहीं मिलती है, सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, तो वो जान नहीं पाते कि उनके शौक क्या है और विपरीत दिशा में अपने आगे बढ़ते हैं, करियर का चुनाव कर लेते हैं जिसके लिए उन्हें परेशान भी होना पड़ता है।
1: और कई बार ऐसा होता है कि माता पिता कुछ बनना चाहते हैं और उनके बहुत सारे शौक होते हैं जो किसी वजह से पूरे नहीं हुए, तो उन्हें लगता है कि जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं उन्हें ये सिखाऊंगी, तो वो भी एक है, उसकी बजाय माता पिता को चाहिए कि खुद ही अपने शौक पूरे कर लें और बच्चे को उनके शौक पूरे करने दें, है ना।
0: और शौक पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती है, कई बार लोग ये कहते रहते हैं कि भाई हमें तो दफ्तर जाने के साथ हमें टाइम नहीं मिलता है, हम ये नहीं कर पाते, तो भाई उसके साथ एडजस्टमेंट हो जाता है, आप सामंजस्य बिठा सकते हैं, और नहीं होता तो जब आप रिटायर हो जाते हैं 60 साल के बाद वो सारे शौक जो अधूरे रह गए उन्हें पूरे कर लेने चाहिए।
1: एक बड़ी मजेदार बात इससे हमें याद आई कि संगीत से जुड़े हुए हमारी एक पहचान के हैं, वो अभी भी एग्जाम्स देते हैं संगीत के, तो वो उनकी उम्र वो 60 से सीनियर सिटीजन है, तो वो जब एग्जाम देने जा रही थी एक बार तो गार्ड ने उन्हें रोक दिया और कहा कि बच्चों के साथ पेरेंट्स नहीं जा सकते ऊपर एग्जाम देने, तो उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो फिर उन्होंने अपना जो वो एग्जामिनेशन हॉल का टिकट होता है वो दिखाया, कहा कि भाई मैं तो स्टूडेंट ही हूँ, तब वो बड़े मजे से वो बात बताई थी कि मुझे रोक दिया मैं क्या करूं, और बाद में उन्होंने अपनी बेटियों को और हम सभी को ये बातें सुनाई।
0: और एक बात और बताएं नेहा आपको, जो जानी मानी गायिका है छाया गांगुली, विविध भारती में जिनका सानिध्य हमें मिला, हम गौरव का एहसास करते हैं जब छाया जी का नाम लेते हैं और उनकी जो गजल है रात भर आपकी याद आती है, गमन फिल्म की गजल जिसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था। छाया जी बताती हैं कि वो रिटायरमेंट के कई साल बाद उर्दू सीखना शुरू किया, उनको उर्दू सीखने का शौक था, तलफ्फुज का बड़ा ख्याल रखती है वो कि कहीं कोई उच्चारण गलत ना हो, तो इसके लिए उन्होंने उर्दू सीखना शुरू किया और एक साल नहीं कई साल उन्होंने उर्दू सीखा, और जब भी कहीं किसी शब्द पर अटकती तो वो फोन करके पूछती थी हम सबसे, तो ये बड़ी बात है, हमने उनका नाम इसलिए यहाँ पर लिया कि वो एक मार्गदर्शक है हम सबके लिए, लेकिन वो एक उम्र के

0: इस खास जगह पर आकर सीख रही है, तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और गाना सुनवाने के लिए भी कोई
1: जब सदा संग रहे

0: नेहा, ये बरसात का मौसम जितना लुभाता है उतना ही सताता भी है, क्योंकि बारिश के मौसम में अलग अलग तरह के कीड़े आसपास होते हैं, नमी बहुत ज्यादा होती है और उसके कारण पता ही नहीं चलता कि कब कहाँ किसकी किस तरह के कीड़े ने अपनी जगह बना ली है। और छोटे छोटे बारीक मच्छर जैसे कुछ कीड़े होते हैं,
1: जी
0: आप नॉर्मल कहीं बैठे हो जहां पर पेड़ पौधे नहीं भी है और पता चलता है, आप दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, एकदम कण एक कण की तरह होते हैं और काट के चले जाते हैं, बहुत देर तक बदन खुजलाता रहता
1: बिल्कुल। और
0: है
1: पानी भी भर जाता है बरसात के मौसम में, कई जगह तो कई हल्के जहरीले कीड़े भी अपने बिलों से बाहर निकलते हैं और उनके काटने की संभावना भी बढ़ती है। अगर इस तरह के कोई कीड़े आपको काटते हैं, जहां भी मतलब अगर सूजन दिख रही है, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो डॉक्टर से सलाह लेना तो उचित है सबसे ज्यादा। और जहां कीड़े ने काटा हो वहां पर बार बार आप खुजलाएं नहीं, क्योंकि खुजली तो होती है पर खुजलाएं नहीं, या तेल चूना या कोई भी दवाई ऐसी हम लगा लेते हैं जो सामने दिखती है, कभी कभी मिट्टी का तेल होता है, केरोसिन होता है, वो लगा लेते हैं। तो ये सब ना करके पानी और एंटीसेप्टिक साबुन से पहले साफ कर लीजिए, और अगर काटने के बाद आपको सूजन आ रही है या चक्कर जैसा लग रहा है, तेज जलन हो रही है, सांस लेने में कभी कभी तकलीफ भी होती है, ऐसा कुछ हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, नहीं तो डॉक्टर को फोन करके आप सलाह ले सकते हैं बाकी मामलों में।
0: बिल्कुल सही कह रही। हालांकि कई बार कुछ छोटे कीड़ों के काटने पर लालिमा जैसी होती है, हल्की जलन भी महसूस होती है, तो इसे पानी से साफ करें और कुछ देर खुजलाने से बचने पर भी वो ठीक हो जाता है। उसे खुजलाए नहीं बल्कि उसको रब करें, हल्के हाथ से रब करें तो भी आराम मिलता है। ऐसे में बेकिंग सोडा के पानी से धोना ठीक रहता है, या फिर डिटॉल वगैरह उस पर लगा देना धोने के बाद ठीक रहता है। और नीम का तेल लगाने की सलाह दी जाती है, हल्की सूजन के लिए बर्फ की सिकाई भी कारगर होती है, लेकिन इस बात के लिए भी डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि कीड़े काटते हैं आपको पता नहीं चलता है कि कोई जहरीला कीड़ा तो नहीं है।
1: जी। और बारिश में कीड़ों से बचाव के लिए आप नीम के तेल या कपूर जैसी सुगंधित चीजों को घर के किनारों में उपयोग कर सकते हैं, तो कीड़े ही कम पनपेंगे, या घर की साफ सफाई करते रहने से भी, नमी को दूर करते रहने से भी कीड़े नहीं बसेंगे। बिस्तर को झाड़ के सोइए, जो कपड़े हमने कहीं लगा दिए हैं।

0: अलमारी में रखें तो भी एक बार झाड़ के पहनिए, जूते चप्पल भी झाड़ कर पहनिए, कभी कभी छोटे छोटे कीड़े उसमें छुपे होते हैं, तो इससे भी हम बच सकते हैं। और हमारे एक साथी ने बताया कि अगर कहीं काटता है, कीड़ा वगैरह काटता है, तो उस जगह को खुजलाए नहीं, अगर अगर आपको कहीं डंक वगैरह अगर दिखता है तो भी आप उसे बिल्कुल भी ना दिखलाएं, मतलब कुछ करें ना उसे
1: बिल्कुल। और अब सुनिए गाना प्रोग्राम का।

0: अब घड़ी की ओर जरा देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं है कि हम कुछ बोले बतियाएं या
1: जी
0: गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और नेहा शर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मुंगारु हंगामी ना बेले वीमे गागी ईग नोंदणी माडिकोळ्ळिरि।
2: बैंक सामान्य सेवा केंद्र ग्राम भवन केंद्र हेच्चिन माहितिगागि www.samrakshane.karnataka.gov.in वेबसाइट के भेटी।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी।
3: टोटल 12 बिल पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, क्योंकि बिजनेस अच्छा हुआ। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
4: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
1: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में

0: कर रहे हैं।
1: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि संसद में आज पारित खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक किसी भी राज्य के अधिकारों को नहीं छीनेगा और न ही राज्य के राजस्व ढांचे पर कोई असर पड़ेगा। नई दिल्ली में श्री रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रमुख खनिजों का उत्पादन बढ़ाना है।
2: एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी भारत सरकार बढ़ा रही है, क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल स्पीड अप करा रहे ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, रोजगार मिले लोगों को, देश को एक मिनरल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम है उसके लिए प्रयास कर रही है। आज नरेंद्र मोदी सरकार जो रिफॉर्म्स लाए हैं, होल ऑफ मिनरल रेवेन्यू जनरेशन में 65% था 2014-15, आज 85% शेयर बढ़ाया, वैसे ही लगभग 23% स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ाया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
3: भारत से अमेरिका, चीन, सिंगापुर, केनिया और मलेशिया को जुलाई महीने में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इटली और वियतनाम को होने वाले निर्यात में भी सुधार हुआ है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद जुलाई में पश्चिम एशिया के देशों में होने वाला भारत का निर्यात सालाना आधार पर 8.62% बढ़कर 570 करोड़ डॉलर हो गया। पिछले साल इसी महीने में यह 520 करोड़ डॉलर था। अमेरिका को होने वाला निर्यात 12.85% बढ़कर लगभग 900 करोड़ डॉलर और चीन को होने वाला निर्यात 64.57% की भारी बढ़त के साथ 220 करोड़ डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है।
4: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन

0: के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इस वर्ष का समारोह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा और इसकी मुख्य थीम विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 1500 कैडेट ने आज शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब और चंडीगढ़ में तिरंगा यात्राएं बड़े उत्साह के साथ निकाली गईं। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांगजनों के साथ एक विशेष संवाद का आयोजन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उनके अनुभवों को सुना और उपलब्धियों की सराहना की। इस विशेष सभा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से जुड़े दिव्यांगजन शामिल हुए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, केरल और माहे में गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। ईशानी के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार बारिश ने कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सिमलीपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बूढ़ा बलंग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मयूरभंज में घर डूब गए हैं और कई गांव तथा बारीपदा शहर के कुछ हिस्से अलग थलग पड़ गए हैं। केंदुझर में पटना और आनंदपुर के पास बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मयूरभंज के कुछ हिस्सों में सड़कें डूब गई है और एक पुल बह गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इस डिप्रेशन के उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर गुजरने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर नांदेड़ के मुगत स्थित गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी से वापसी के दौरान हाथ में चोट लगने के बाद उनका महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो वे और भी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों द्वारा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना के मद्देनजर रांची प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के

कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।